अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आयद ईरान के लेबनान में पैं प्रॉक्सी के दुखियाई पैदा करण का बिना देर रोकण घुर्ज। अमरीकी सदर समाजी राबत की वेबसाइट के बयान में ये न करण से ईरान के गुजरल हफ्ते जिया बीहर पूरी ताकत से निशानो बनाई। पुलिस एहलकार की शहादत में मुलवस एक डुआारी मुबैना मुकाबले में मारी वो घारे थाने की हद बाबड़ा रोड से पुलिस ए डुआारे में मुकाबलो फायरिंग की डेवट में एक हथियारबंद मारी वो टे फराती पाया। पुलिस मूजिब मारी वह डुआारी घारो में पुलिस एहलकार की शहादत में मुलवस हो संदस सुप औस्ता मोहम्मद वासी हजूर बख्श अपनो तौर थी। मुकाबले में मारी वह डुआारी जो लाश रूरल हेल्थ सेंटर घारो मुंतकिल फराती वेल डुआारे की गिरफ्तारी लाइ पुलिस की नाकाबंदी जारी। शहीद पुलिस एहलकार अकबर मरी ए मजीद मरी की डंडो अलायार में सरकारी एजाज से जनाजे माज बाद बड़बेटी हवाले कर रहा।

रखण भरिसां अलम लॻाइण दौरान करंट लॻण सबबु फौत जो अघु वधी अठ थी वियो। 15 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ वॾो में बिजली जे हाई वोल्टेज तार मां करंट लॻण सबबु दीन मोहम्मद लोलाई, संदसि भाउ हिदायतुल्लाह लोलाई, शफ़ीक़ अहमद लोलाई, असद सोलंगी, वहीद लोलाई, ख़ालिद लोलाई ऐं ज़ाहिद लोलाई फौत थी विया। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि अज़ादारनि पारां अलम पाक लॻाइण दौरान हथनि मां निकिरी वञण सबबु बिजली जे तारनि मथां किरी पियो, जंहिं सबबु वाकियो पेश आयो।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: लोलाई खालिद लोलाई जायद लोलाई फौती इलाक़े वासन मौजूब अदारन पारा अलम पाक लगन दौरान हथन में निकली वन सब बिजली के तारन में किरी पो जो वाक्य पेश आया। मोरो वेझो टूर प्लाजा दर्द शाख वटाइंदड़े जो लाश तितला पुलिस पहुंची लाश सिविल अस्पताल मोरो मुंतकिल कर छो। पुलिस मौजूद पौती सुणप दर्स घोट के आशिक हुसैन अबड़ो तौर थी है वारसन जो चवण है खदशात नौजवान के कत्ल किया वो है वाकई की जांच कर।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीकी नायब सदर जेटी विलियम्स चयो आहे त समूरी दुनिया में पाकिस्तानी साराह थी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसम मुनीर बहितरीन कमु कयो। मुंहिंजी ज़िंदगी में ॿ अहम तरीन शख़्सियतूं, हिकु पाकिस्तानी ऐं ॿी भारतीय आहे। भारतीय शख़्सियत मुंहिंजी घरवारी ऐं पाकिस्तानी शख़्सियत फील्ड मार्शल आज़म मुनीर आहे। सचियो आहे त गुज़िरियल टिनि महीननि में जेतिरो फील्ड मार्शल आसम मुनीर सां राब्तो रहियो, एतिरो कंहिं ॿिए सां राब्तो ऐं ॻाल्हि ॿोल न आहे थी। फील्ड मार्शल आसम मुनीर बिना कंहिं शक जे हिकु अज़ीम सिपह सालार आहे, पर मूंखे लॻे थो त हुन सां गॾु हिन पाण खे माहिर सफ़ारतकार पिणु साबित कयो आहे।

अमरीकी सदर ईरान के बीहर धमकी डोनाल्ड ट्रंप चवा ईरान के लबनान में पंजे प्रॉक्सीज के दुकान पैदा करण का बिना देर रोकण घुर्जे। ईरान ये न कह तो खेस गुजरियल हफ्ते जिया बीहर पूरी ताकत से निशानों बढ़ाई। दखण भरसा आलम लगाने दौरान करण लगन सबब फोतन जो अंग वधी अठ थी वो 15 जणा जख्मी गोट बुढ़ो में बिजली कार में करण लगन सबब दीन मोहम्मद लोलाई सनत भाव हिदायतुल्ला लोलाई शफीक अहमद लोलाई हसन सोरंगी वहीद लोलाई खालिद लोलाई और जाहिद लोलाई फोत थी वह इलाके वासन मौजूद अदारों पारा आलम पाक लगाने दौरान हथन में निकली वन सबब बिजली के तार मत किरी पो जै सबब ही वाक्य पेश आयो। कोरवा में पंज डी कतल थे आमना खासके के कातिल की गिरफ्तारी लाए वारसन पारा भुख हड़ताल कैंप कायम। वारसन चो तो कातिल सरियाम घुमी रहा है खामोश रहने लाए धमकाए रहा है नोटिस वी तहफुज फराम कया वे।

सखर में पुलिस जा धारदार मुकाबला बदोहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार पुलिस मौजूद आबाद थाने जद जाफराबाद लिंक रोड पर मुकाबले में नसरुल्ला मीरानी के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो इस्लामाबाद टकरी वट मुकाबले बाद एक दोहारी के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो उसने सुणप यासीन मीरानी तौर किया है। कनकोट में पुलिस जो मुबैना

0: काबलो कत्ल केस में बदुहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार करने की दावा। पुलिस फौज फायरिंग की देवट में गुलाम रसूल ममदानी और हसनैन बंगवार के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो है। जवाबदार एक ढी अग फुर दौरान व्यापारी के कत्ल करने एतराफ़ पिण है।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GAFM सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चवायत तेल ऐं पेट्रोकेम जी बरामद तां बि पाबंदियूं हटाई वियूं आहिनि। ईरान जी रहिस तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमेरिकी सदर जी ईरान खे ॿीहर धमकी। ईरानी प्रॉक्सीज खे छिकतान वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चवाए त ईरान संदसि ॻाल्हि न मञे त खेसि ॿीहर निशानो बणायो वेंदो। ईरानी क़यादत अमेरिकी सदर ट्रंप जी धमकियुनि खे रद्द करे छॾियो।

0: ऐं ॾखण वेझो अलम पाक बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबबि फोत थियल 8 ॼणनि जी जनाज़े निमाज़ अदा ॻोठ बडो में दरगाह नूरशाह ते अलम पाक बुलंद करण दौरान अरबाब हसन ऐं ॿिया फोत थिया हुआ। जनाज़े निमाज़ में एस एस पी शिकारपुर ऐं शिया अॻवाननि समेत सियासी समाज अॻवान शिरकत कई। माहौल सोगवार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पहचो शहर पहचो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: जीए एफएम 90.8।

0: क्रश एक का रिकमेंड, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे गेंद, ना करूँ तुझे ब्लॉक ना करूँ तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त तहत अमेरिका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतह गॾिजाणी में मस्बत अघु भराई थी आहे। अतमी माहिते जे लाइ 60 ॾींहनि जे रोडमैप ते इतफ़ाक़ थियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ईरान ऐं अमेरिका विच में स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि बाबति जारी बयान में चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान आला सतह कमेटी ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि जे लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमेरिकी ईरानी क़यादत जे तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे कोशिशुनि ते बि संदसि थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश ऐं अज़म सबबि अघु भराई थी आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदारु साराह जोॻो रहियो।

सिंधा कोर्ट SPSC में गडल चटाभेटी 2024 जे पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड 30 जून ते तलब करे वरितो। AG सिंध चवाए तो केस के कानून मूजिब हलाया वही अदालत पब्लिक सर्विस कमीशन के कंट्रोलर इम्तिहान के तलब नहीं कर सके। दरख्वास्तदार के वकील चाहे तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पैंने वफाद तहत कानून ठाया है। जस्टिस निसार अहमद भंभरो रिमार्क सुना तो जेस तीन सजा न मिली मामला ठीक न थन्दा। सिंध में ज़रई पानी की खोट खत्म न थी। मुख्तलिफ़ शहर में फसल पानी न मिलने सबब सड़न लगा। बारह में SUP जो पानी की खोट खिलाफ़ एहतजाज रैली कढ़ी धरणों में हो। मीरपुर भठौर में अवामी तहरीक जो पानी की खोट खिलाफ़ एहतजाज इलाके के शाखन वाहन में पानी छड़न ए फसल बचाने जो मुतालबो। दखण वेझो अलम बुलंद करण दौरान करंट लगण सबब फौत थियल 8 जणन की जनाज़े नमाज़ बाद तस्फीन। जनाज़े नमाज़ में ज़िले ऑफिसर शहरन इलाइक़े वासिन की शिरकत। गोठ बडो में दरगाह नूरशाह ते अलम बुलंद करण दौरान करंट लगण सबब 8 जणा फौत थिया हुआ।

दादू वेझो केटी जतोई में औरत मुबैना तौर घर अणमृत खीर पिया बार समेत दरिया में टपो ॾेई छॾियो। औरत जो लाश हथ मासूम बालक जो लाश न मिलियो। पुलिस वाके जी तस्दीक कंदे चयो आहे त औरत जो लाश मिलियो आहे, ॿार जो नाहे मिलियो। वधीक जांच जारी आहे। सिंधु हुकूमत पारां 9 ऐं 10 मुहरम हलाम ते सूबे में आम मोकल जो ऐलान। खमीस ऐं जुमे वारे ॾींहुं सरकारी इदारा बंदि रहंदा। नोटिफिकेशन जारी।

खोड़ा वेझो ॻोठ रीडर लाशारी में एच आई वी मुतासिर वधीक हिकु ॿार फौत। एच आई वी मर्ज़ लॻी 10 महीननि जो हसन दस्तगीर पुटु नवीद लाशारी फौत थियो। हिकु हफ़्तो अॻु साॻे ॻोठ में 10 महीननि जी साइमान थी वेंदा त लाशारी पिणु एच आई वी विघे फौत थी वई हुई। एच आई वी विघे ॿारनि जी फौतगीअ सबबि रहवासियुनि में ॻणितीअ जी लहर छायल। उमरकोट में पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारों एहतजाज। मेरिट तहत वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों के नौकरी देने का मुतालबो। टेस्ट पास उम्मीदवारों तो पुलिस में हजारे जय खाली हैं, वेटिंग में रखे वो है पर नौकरी न पी डी नौकरी डी वन। पिरालो शहर में मोबाइल फोन के दुकान से हथियारबंदन की काह। मालिक पारा 22 लख रुपये फुर की दावा। शाही बाजार में कायम मोबाइल फोन के दुकान तथा थियल फुर जा सीसीटीवी फुटेज भी सामू अची वह। सीसीटीवी फुटेज में बुट बधल हथियारबंदन के दुकान में फुर लुट कंदे ऐसी सके तो।

0: ऐं मनोहर वेझो पोइ हथ ते घर खे बाहि लॻी वई. हिकु मेंहिं ऐं चार बकरियूं सड़ी मरी वियूं. ॻोठा जी गादी डायरीअ में अलीम डायरीअ जे घर खे बाहि लॻी. माल जे छपर खे बाहि लॻण सबबि हिकु मेंहिं ऐं चार बकरियूं सड़ी मरी वियूं. मुतासिर मूजिबि समूरो सामान चौपायो माल सड़ी मरी वियो आहे. सहायता कई वञे.
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
2: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो. जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी. जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहतू रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके. ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन. व्हाट्सएप नंबर 03111770451. ही एक बेहतरीन करियर मौके है. देर न करो अभी अप्लाई करो. जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ. जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे यो इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

पाकिस्तानी सदर मसूद पेजवान जी सुभाणे पाकिस्तान के दौरे से अचण का इम्कान सिफारती जरिए मौजूद ईरानी सदर पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे से सुभाणे इस्लामाबाद पहुंचंद मसूद पेजवान पाकिस्तान की सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकातू कद पाकिस्तान जा सूरत हाल में मस्बत किरदार से थोड़ा भी मनी अमरीका ईरान विच में हतमी माहदे लाए 60 डीन जो रोडमैप मंजूर लबनान में जगबंदी से अमल दरामद लाए डी कन्फ्लिक्शन सेल ठाण से भी इतफाक अमरीका ईरान विच में इस्लामाबाद मफावती यादाशनामे तहत गालियों जो सिलसिलो जारी रखने जो फैसलो निगरानी लाए आला सतही कमेटी कायम स्विट्जरलैंड में थियल ईरान अमरीका गालियों जो गडियल पतरनामो जारी अबना हरमुस में जहाजन की अच वन बहाल रखण ए गलत फहमी का बचण लाए हॉटलाइन कायम एटमी प्रोग्राम पाबंदियों ए तकरार के हल लाए धारदार वर्किंग ग्रुप्स कायम परडेही खाते है डी कन्फ्लिक्शन सेल में लबनान ए सालिस मुल्क शामिल हुंदा स्विट्जरलैंड रोडमैप से इतफाक के सुठो सवण करार दई छो अमरीका ईरान विच में हतमी माहदे लाए 60 डीन जो रोडमैप मंजूर थियण बाद टेक्निकल सतह से गालियों जारी ईरान मीडिया मूजिब बिन्हीं मुल्क विच में टेक्निकल सतह से गालियों जारी रहंदियों बिन्हीं मुल्क जा आला सतही वफद गालियों जो हिस्सों हुंदा ईरान जो आला सतही वफद रोडमैप से इतफाक बाद स्विट्जरलैंड का वापस डे रवानो ईरानी परडेही वजीर अब्बास अराग़ची ईरान की नाकाबंदी खत्म कर कुछ मुंजमद असासा जारी किया व्या पाकिस्तान ए कतर की टाकड़ी में लबनान जंग खात्मे लाए भी अहम अगभराई थी है तेल की बरामद तक पाबंदियों हटाई हुई हैं ईरान के नए सिर तामीर ए तरक्की जो नव मनसूबो भी शुरू कयो वियो है अमरीकी सदर जी ईरान के बीहर धमकी लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज के छिकताण वधाण का रोकण जो मुतालबो डोनाल्ड ट्रंप है ईरान सदस्य गाल न मनी तो खेस बीहर निशानो बनाए वो आबना हुरमुस से टोल टैक्स अमरीका के वटण घुर्जे आबना हुरमुस जो कंट्रोल अमरीका पिण वट भी रखी सके तो अबना हुरमुस ईरान की खुदमुख्तियारी की अलामत है अबना हुरमुस बाबत हतमी फैसलो तेहरान कद ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी ट्रंप के मुखातिब थन्दे है अवा धमकियों डींदा अस कार्रवाई कदा अबना हुरमुस जो ना नई जदीद दौर के सामुंडी धाड़ेलन जो इलाको है आबना हुरमुस बाबत फैसले जो इख्तियार ईरानी अवाम ए संदस बहादुर फौज वट है बो केर नो कर सके बरतानवी वजीर अजम केयर स्टाबर उहदे तां मुस्तफ़ी टेन डाउन स्ट्रीट ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे केयर स्टाबर मुस्तफ़ी थियण जो ऐलान कयो केयर स्टाबर चयो त हुन मुल्की मईशत खे ॿिनि सालनि दौरान मज़बूत कयो पार्टी जी ख़्वाहिश ते उहिदो छॾे रहियो आहियां ईंदड़ वज़ीर आज़म सां भरपूर सहकार कंदुसि इरसा में सिंध जो नुमाइंदो शफकत हुसैन वतो बीमार हुअण सबब कारोबार हलाइण खां लाचार इरसा सिंध जी गैर हाज़िरीअ जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसला करण लॻी आबपाशी खाते इरसा लाइ मुतबादिल प्लान न जोड़ियो सूबे में पाणी जो बुहरान संगीन थी वियो ज़रियन मूजिब इरसा समूरियुनि गॾजणियुनि जा नोटिस ॾिना सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो पाणी जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जे गैर मौजूद सूबे के नुकसान पहुंचाया इरसा इजलास में सिंध जो आवाज न होजन सबब पानी वर्च बाबत मनपसंद फैसला कया व्या सिंध असेंबली के बजट इजलास में मेंबर जू पानी कोट चूंदा हूं सूबाई सतह से मोटरवे अथॉरिटी कायम करण की भी तजवीज सिंध की बजट से गलाईंदे सूबाई वजीर जाम विक्रमुल्ला धारे जो सिंध में पानी की सख्त खोट है पंजाब में चनाब दरिया से नई केनाल ठाने की गाल थी रही है सिंध हुकूमत दरिया से नव मनसूबन से मसामत कंदी नेशनल हाईवे मोटरवे अथॉरिटी कायम कर सिंध के रोड्स से कम कर सके तो सूबाई वजीर रियाज शाह शिराजी सूबे में पानी संगीन थी वो है फसल पोखण लाए पानी दिनो वे फयाजपुर मुल्क के गैस ए बिजली दीदड़ सिंध में ही गैस ए बिजली अणलब है पिंक
ان کی کراچی جی ہوجائے یا لاہور جی قانون کا نہ بچندے کوکین ہیروئن جے کاروبار کرے یا ہیرن جو پنکی بچندی نہ پن کو بچندو قومی اسمبلی میں گالائندے گھرو معاملن بابت مملکتی وزیر طلال چوہدری چھو تا حکومت پاکستانی پاسپورٹ جی عزت دنیا میں ودھائی ہے سعودی عرب 5000 فقیر پاکستان موٹایا ہیں دبئی وارن کے بھی ساگیو مسئلو ہے اگر کھا ڈنا ویا ہیں دہشت گردی ختم کرے ہی ملکی معیشت بہتر کرے سکے تھی دنیا میں کتے بھی سیاسی مخالفن کے سزاؤں نہ ڈنوں ویندیوں ہیں 35 ہفتن کا پی ٹی آئی بانی سے ملاقات بند ہے شاہ وزیر اعظم وٹ ملاقات جو اختیار نہ ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جو قومی اسمبلی میں خطاب قانونی بارے وزیر سینیٹر اعظم تارڑ چیو ہے تا آئین جی گال تھا کہو آئی کورٹ جے ججز جی مقرری لائے آیا سی پر وہاں کمیٹی میں نہ آیا عدالتی معاملے میں حکومت کچھ نتھی کر سکے وہاں کی اعلیٰ عدلیہ میں وجن گرجے سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے گڈیل چٹابیٹی 2024 وارن امتحان جو سمورو ریکارڈ 30 جون تے طلب کرے ورتو آئی جی سندھ چاہو تا کیس کے قانون موجب ہلایا ونے عدالت پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر امتحان کے طلب نتھی کرے سکے درخواست گزار کے وکیل چاہو تا سندھ پبلک سروس کمیشن پینجے مفاد تحت قانون ٹھایا ہن جسٹس نثار احمد بمبرو ریمارکس دینا تا جیس تائیں سزا نہ ملندی معاملہ ٹھیک نہ تھیندا

सिंध में ज़री पाणी जी खोट खत्म न थी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलण सबबि सड़ण लॻा। वारे में SUP जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, रैली कढी धरणो बि हयो वियो। मीरपुर वटोरो में अवामी तहरीक जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, इलाइक़े जी शाखनि ऐं वाहन में पाणी छॾण ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो। सिंध में पदमनी पुर जी धारधार वारदातनि दौरान हिकु नौजवान क़तल, चइनि भाइरनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। शहदादपुर भरिसां अंग लाड़े वटि पुर दौरान मुज़ामत ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी नौजवान मोहम्मद मिट्टल बुलेदी खे क़तल करे छॾियो। फायरिंग में मक़तूल जो सोट शेर ख़ान बुलेदी ज़ख़्मी। पीर वसण भरिसां बहिराण हाईवे ते मोटरसाइकिल फुरण जी कोशिश, मुज़ामत ते 4 भाइर ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि में पुनल लाशारी, प्यार अली लाशारी, मोहम्मद पोटल लाशारी ऐं वाजिद लाशारी शामिल। जवाबदार मोटरसाइकिल सां गॾु ॿ पिस्टल ऐं हिकु मोबाइल फोन बि खसी विया। ॾखण वेझो अलम बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबबि फोत थियल 8 ॼणनि जी जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन। नमाज़ में ज़िले आफ़ीसरनि, शहरीनि ऐं इलाइक़े वासियुनि जी शिरकत। ॻोठ बुडो में दरगाह नूर शाह ते अलम बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबबि 8 ॼणा फोत थिया हुआ। दादू वेझो केटी जतई में औरत मुबैना तौर घरू अणबणत तां खीर पिया अख़बार समेत दरिया में टपो ॾेई छॾियो। औरत जो लाश हथ, मासूम बालक जो लाश न मिलियो। पुलिस वाकिए जी तस्दीक कंदे चयो आहे त औरत जो लाश मिलियो आहे, ॿार जो नाहे मिलियो। वधीक जांच जारी आहे। सिंध हुकूमत पारां 9 ऐं 10 मुहरम हराम ते सूबे में आम मोकल जो ऐलान। ख़मीस ऐं जुमे वारे ॾींहुं सरकारी इदारा बंदि रहंदा, नोटिफिकेशन जारी। कड़ा वेझो ॻोठ ट्रेडर लाशारी में HIV मुतासिर वधीक अख़बार फोत। HIV मर्ज़ विखे 10 महीननि जो हसन दस्तगीर पुट नवीद लाशारी फोत थियो। हिकु हफ़्तो अॻु साॻई ॻोठ में 3 वरियनि जी साइमा थी नादिर लाशारी पिणु HIV विघे फोत थी वई हुई। HIV विघे ॿारनि जो जी फोतगीअ सबबि रवासियुनि में गणतीअ जी लहर छायल। उमरकोट में पुलिस में भर्ती लाइ टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो एहतजाज, मेरिट तहत वेटिंग लिस्ट उमेदवारनि खे नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो। टेस्ट पास उमेदवारनि चयो त पुलिस में हज़ारे जायूं ख़ाली आहिनि, वेटिंग में रखियो वियो आहे, पर नौकरियूं न पियूं ॾिनियूं वञनि, नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। परियालू शहर में मोबाइल फोन जी दुकान ते हथियारबंदनि जी का मालिक पारां 22 लख रुपियनि जी पुर जी दावा। शाही बाज़ार में कयल मोबाइल फोन जी दुकान तां थियल पुर जा CCTV फोटेज बि साम्हूं अची विया। CCTV फोटेजिस में गुट बदल हथियारबंदनि खे दुकान मां पोइ लुट कंदे ॾिसी सघिजे थो। खैरपुर नाथन शाह वेझो लाश दफ़नाइण लाइ वेंदड़ कांधियुनि ते हमिलो। फायरिंग में 2 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ कारो कबड़ जे कब्रिस्तान में सामी खोटण लाइ वियल चांडिया बिरादरी जे माण्हुनि ते हथियारबंदनि फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि 2 ॼणा गुल मोहम्मद ऐं पुनल ख़ान चांडियो ज़ख़्मी थी पिया। कांधियुनि में बाद हमिलो कंदड़नि लाश दफ़नाइण न ॾिनो। कांधी मैयत खणी वापसि रवाना थी विया। मुतासिर थुर्जी अब्दुल गफ़ार चांडियो जो चवणु आहे त हमिलो कंदड़नि फायरिंग करे 2 ॼणा ज़ख़्मी कया, मोटरसाइकिलूं बि खसी वियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कई वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आए जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आहे। देर न करियो अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
2: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असुल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के यो इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कर वने थो GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्त तलब कई वने थियो GFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको है देर न करियो अभी अप्लाई करियो GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
3: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज रिंद परूड़ी ने राज

0: गदर गला तुझे और
1: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजा पुसण जो करार असल इमामन सी।

अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर। लबनान में जंग बंदीअ ते अमल दरामद लाइ ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामे मूजिब इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइमु कई वई। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़नि जी अचु वञु बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमीअ खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइमु। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारुनि जे हल लाइ धारधार वर्किंग ग्रुप्स बि क़ाइमु। परॾेही खाते चयो आहे त डी कंफ्लिक्शन सेल में लबनान ऐं टियाकड़ी कंदड़ मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते तफ़ाक खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म चयो आहे त अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे तहत अमरीका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणीअ में मुस्बत अकबराई थी आहे। हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जी रोड मैप ते इतफ़ाक़ थियो। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटीअ ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानीअ सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार ॻाल्हियुनि ते सदन थोरायतो आहियां। तारीख़ी अमल खे अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिशनि ते बि संदसि थोरो मञा थो। फील्ड मार्शल जी कोशिशनि ऐं अज़म सबबु अकबराई थी आहे।

यानी वफद की वॉकआउट वाली धमकी बावजूद गालन में वरी अग भराई थी। गुजरियल 24 कलाकन सुठा रहा। लबनान में अमन रो है, आबना हुरमज भी खुलल है। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंट्स आलमी तवानाई एजेंसी जहाँ इंस्पेक्टर ईरान वींदा तहरान से थियल मुआदे की निगरानी कंदा। इसराइल के दिफा वाले हक के तस्लीम क्यों था, पर लबनान की खुदमुख्तियारी जो भी तहफुज चाहूँ था। गालन दौरान अमरीका पारा तय कल चार ही हदफ हासिल कया।

ईरानी सदर मसूद पेशकियान सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुचंदो। संदस आचीअ लाइ इस्लामाबाद खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। सफारती ज़रियनि मूजिबि ईरानी सदर मुख़्तसिर दौरे दौरान पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरत हाल में मुस्बत किरदार ते बि थोरा मञी थो।

आबनाए हुरमज़ ईरान की खुदमुख्तारी की अलामत है। आबनाए हुरमज़ बाबत हतमी फैसलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी ट्रंप के मुखातिब थींदे चयो तव्हां धमकियूं ॾींदा आहियो असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबनाए हुरमज़ अवां जो नाहे नई जदीद दौर की सामूंडी धाड़ेलन जो इलाइक़ो आहे। आबनाए हुरमज़ बाबति फ़ैसिले जो अख़्तियार ईरानी अवाम ऐं सनस बहादुर फ़ौज वटि आहे, ॿियो केरु नथो करे सघे। सिंध असेंबलीअ में एम क्यू मेंबर फरहान अंसारी जी एम पी एस खे बोरी बंद लाशन जी धमकी। पीपल्स पार्टी मेंबर्स जो एहतजाज, घरू वज़ीर पारां जांच कराइण जो ऐलान। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम पी ए फरहान अंसारी चयो त रुगो बोरी बंद लाशन जो ज़िक्र कंदा आहियो, कॾहिं बोरी ॾिठी अथव? छा बोरी ॾिसी सघंदो? अवां बोरी सही बि न सघंदा। घरू वज़ीर ज़ियालन जा चयो त एम पी ए अणसिधी तरह ऐवान खे बोरी बंद लाशन जी धमकी ॾिनी। हीअ ख़तरनाक ॻाल्हि आहे, मां जांच जो हुकुम ॾेई रहियो आहियां। कमेटीअ जी अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त मां इजाज़त ॾियां थो, तव्हां जांच कराए सघो था। लफ़्ज़ इंतिहाई ग़लति आहिनि। इरसा में सिंध जो नुमाइंदो शफ़क़त हुसैन वधो बीमार हुअण सबबि कारवांवार हलाइण खां लाचार। इरसा सिंध जे ग़ैर हाज़िरी जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आपाशी खाते इरसा लाइ मुतबादल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पाणीअ जो बोरान संगीन थी वियो। ज़रियुनि मूजिबि इरसा समूरनि गॾिजाणियुनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो। पाणी जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जी ग़ैर मौजूदगी सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज़ न हुजण सबबि पाणी विर्छ बाबति मनपसंद फ़ैसिला कया। पिनकी कराचीअ जी हुजे या लाहौर जी, कानून खां न बचंदी को हीरोइन जी कारोबार करे या हीरनि जो, न पिनकी बचंदी न पिनको। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे घरू मामलनि बाबति मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो त पाकिस्तानी पासपोर्ट जी इज़त दुनिया में वधाई आहे। सऊदी अरब 5000 फ़क़ीर पाकिस्तान मोटाया आहिनि, दुबई वारनि खे बि साॻियो मसइलो आहे। अंग अखर ॾिना विया आहिनि, दहशतगर्दी ख़तम करे ई मुल्की मैशत बहितर करे सघिजे थी। दुनिया में किथे बि सियासी मुखालफ़नि खे सज़ाऊं नथियूं ॾिनियूं वञनि। 35 हफ़्तनि खां पीटीआई बानीअ सां मुलाक़ातूं बंदि आहिनि। छा वज़ीर आज़म वटि मुलाक़ात जो अख़्तियार नाहे? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तार जवाबु ॾींदे चयो त आईन जी ॻाल्हि था कयो। हाईकोर्ट जे जजिस जी मुक़ररी लाइ आयासीं पर अवां कमेटी में न आया। अदालती मामले में हुकूमत कुझु नथी करे सघे, अवां खे आला अदलिया में वञणु घुरिजे। सिंध हाईकोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी गॾियल चटाभेटी 2024 वारनि इम्तिहाननि जो समूरो रिकॉर्ड 30 जून ते तलब करे वरितो। एजी सिंध चयो त केस खे कानून मूजिबि हलायो वञे। अदालत पब्लिक सर्विस कमीशन जे कंट्रोलर इम्तिहान खे तलब नथी करे सघे। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजे मफ़ाद तहत कानून ठाहिया आहिनि। जस्टिस निसार बमरो रिमार्क्स ॾिना त जेसि ताईं सज़ा न मिलंदी मामला ठीक न थींदा। सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़तम न थी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलणु सबबि सड़नि लॻा। वारह में एस यू पी जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, रैली कढी धरणो हयो वियो। मीरपुर वठो में अवामी तहरीक जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, इलाइक़े जे शाखनि ऐं वाहन में पाणी छॾणु ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो। रखण वेझो अलम बुलंद

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसन जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: में बात करते हैं,
1: शर्म लोग क्रंच कर रहे हैं।
0: तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी, या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? मैंने कोई गाली नहीं बकी।
1: अब अपने अल्फाज वापस ले ना, आपने बेशर्म,
0: मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं?
1: ठीक है
0: सर, बेशर्म
1: वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ।
2: माफी नहीं मांगेंगे हम, बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए।
3: टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाएं।
0: ये मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ब्राइड करें जो दिल करें। एमपीएम एक थी, एमपीएम एक है और एमपीएम एक रहेगी।
4: सिंध असेंबली में एमक्यूएम मेंबर लाशन जी डे वे हुकूमती अपोजिशन मेंबर्स हथे पेजी वया। घरू वजीर पारा मुतहदा मेंबर्स की धमकियों वाले मामले की जांच करण जो ऐलान। सिंध असेंबली में गालंदे एमक्यूएम एमपीए फरहान अंसारी चौतरुगो बोरी बंद लाशन जो जिक्र कंदा आयो। कने बोरी डिठी अथो छा? बोरी डिसी सकंदो? अवां बोरी सही भी न सकंदा। घरू वजीर ज़ियालन जा चयो त एमपीए अणसिधी तरह ऐवान के बोरी बंद लाशन की धमकी दिनी है। हे खतरनाक गाल आहे, मां जांच जो हुकुम दे रहियो आहियां। कमेटी जी अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त मां इजाजत दियां थो, अवां जांच कराए सघो था। लफ्ज़ इंतहाई गलत आहिनि। धमकियुनि वारे मामले ते हुकूमत ऐं अपोजिशन मेंबर्स हथे पइजी विया, हिक ॿिए खे धिका।

अमेरिका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक़। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामे मूजिबि इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइमु कई वई। आबनाह हुरमज़ में जहाज़नि जी अचवञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमीअ खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइमु। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारुनि जे हल लाइ धार धार वकीन ग्रुप्स बि क़ाइमु। परॾेही खाते चयो आहे त डी कंफ्लिक्शन सेल में लबनान ऐं ट्रैकड़ी कंदड़ मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ स्विट्ज़रलैंड जे कामयाब दौरे बाद वापसि ॾे रवानो। वज़ीर आज़म चयो त अलहमदुल्ला इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त तहत अमरीका ऐं ईरान विच में थियल पहिरीं आला सतही गॾिजाणीअ में मुस्बत अॻुवाई थी आहे। हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जी रोड कमेटीअ ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानीअ सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ऐं ईरानी

0: सख्ती शहादत जी मिड़ो ई मलान के जरो नाहे यजीद के ई इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमाम मनसी
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार करियर मौको पेश कर वने तो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्त तलब कई वन थी जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको है देर न करियो अभी अप्लाई करियो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज

0: हम मौला आएंगे, बोलो बोलो मौला सुनते हैं, हमारा ईमान है मौला सुनते हैं। आएंगे जब मौला आएंगे, जब मौला आएंगे। आंधियां जो चल रही हैं, आंधियां जो चल रही हैं कुफ्र और इल्हाद की, आंधियां जो चल रही हैं कुफ्र और इल्हाद की, है आजादारी की दुश्मन नस्ल जो शरदाद की, है आजादारी की दुश्मन नस्ल जो शरदाद की, कब तलक बच कर रहेगी कौम इब्ने ज़ियाद की, कब तलक बच कर रहेगी कौम इब्ने ज़ियाद की, है बहुत नजदीक मंजर मौसम इंसाफ का। खिलाफ का जब मौला आएंगे, जब मौला आएंगे, जब मौला आएंगे।
1: फिर पढ़ता हूँ ये जो पहले की, पहले की।
0: आएंगे जब मौला आएंगे,
1: अरीज़े
0: अरीज़े आएंगे, जब मौला आएंगे, जब मौला आएंगे। ये अरीज़ों का चरागा है जो सतह आब पर, ये अरीज़ों का चरागा

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजा पुसण जो करार असल इमामन सी।

के तेल जे विक्रय ऐं ख़रीद करण जे 60 ॾींहनि लाइ इजाज़त ॾेई छॾी। अमरीकी नाणे खाते पारां ईरान खे लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिबि ईरान 21 अगस्त ताईं पेट्रोल ऐं पेट्रो केमिकल शयूं विक्रय करे सघंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारियूं शयूं अमरीका खे बि विकिरो करे सघंदो।

सिंध में ज़रई पाणी जी कोट ख़त्म न थी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलण सबब छण लॻा। वारे में SUP जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, रैली कढी धरणो बि हयो वियो। मीरपुर भठौर में अवामी तहरीक जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, इलाइक़े जी शाखनि ऐं वाहन में पाणी छॾण ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो।

ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो जूनियर चयो आहे त सिंध में पाणी जी शदीद खोट आहे। केनालनि जे तकरार सबब सिंध सभ खां वॾे मसइले खे मुंहुं ॾेई रही आहे। सजावल टटो, बदीन टटो, मोहम्मद खान सभ खां वधीक मुतासिर ज़िला आहिनि। कंडियारो में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ज़ुल्फ़ार भुट्टो जूनियर चयो त सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार ऐं पेंशन में सिर्फ़ 7% वाध मुलाज़िमनि सां वॾो मज़ाक आहे। गर्मी दौरान बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। HIV जहिड़नि मर्ज़नि खे मुंहुं ॾियण लाइ का रिथाबंदी नाहे। सिंध में बदमनी, पुरजी धारदार वारदातनि दौरान हिकु नौजवान क़तल, चइनि भाउरनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। शहदादपुर भरिसां अंगल लाड़े वटि पुर दौरान मज़ामत ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी नौजवान मोहम्मद मिठल बुलेदी खे क़तल करे छॾियो। फायरिंग में मक़तूल जो सोट शेर खान बुलेदी ज़ख़्मी। वारिसनि जो कोटूमोट चौक ते धरणो। पीर वसण भरिसां मेहरान हाईवे ते मोटर साइकिल फुरण जी कोशिश। मज़ामत ते 4 फायर ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि में पुनल लाशारी, प्यार अली लाशारी, मोहम्मद पोटल लाशारी ऐं माजिद लाशारी शामिल। गारो में शहीद थियल ॿिन पुलिस अहलकारनि जा वारिस पुलिस ऑफिसर्स खां मायूस। केस ख़राब करण जो ख़दशो बि ज़ाहिर। वारिसनि चयो त पुलिस जे ॿिन जवाननि खे शहीद कंदड़ जवाबदार खे फुल फ्राई करण बदिरां गिरफ़्तार करे जांच कई वञे हा। क़ातिल जवाबदार खां जांच करे समूरनि जवाबदारनि ऐं सहूलतकारनि खे सोगो करणु घुर्जे हा।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे यो इश्क जो आजा पुसण जो करार असल इमामन सी।

0: तेरा जलवा हर सू लाइटे इश्क है तू, तेरा जलवा हर सू
1: है मेरे रब जहां, ऐ मोहम्मद के खुदा इश्क तूने भी किया, ओ मोहम्मद तेरा जिसकी चाह
0: के लिए ये जहां
1: किया, वो तेरा इश्क ही था, वो तेरा इश्क ही।

0: जैसे वो जुल्फ की वैसे था जुलझन, बचपन से सांस ही रहता था जुलझन, बेमसलो बेनजीर था आप था जुलझन, क्यों ना हो रसूल ने पाल था जुलझन, पहला सवार नबी एक दिगार है और दूसरा ये दूसरे नबी का सवार है। जस्त शेर की चितवन हिरन की आँख, चलता देख देख के शाह जमन की आँख, पड़ती थी यूं हर पे उस सब चिकन की आँख, लड़ती हो जैसे जंग में शमशीर जन की आँख, तेरे भाई जिस पे उसका विवार पे चल गया वो सिर गिरा गई तो ये लाश कुचल गया। कहता था ज़ुल्फ़िकार से अब मेरी जंग देख, चल मेरे सांस आज जरा मेरा रंग देख, इस प्यास में लड़ाई का मेरा भी ढंग देख, राहे हयात इतनों पे करता तंग देख, माना तू ज़ुल्फ़िकार है मर शिकार है, लेकिन ये देख कौन ये मुझ पर सवार है। सिम्फ जमा इधर आए उधर गया, चमक गिरा जमा दिखाए ठहर गया, तीरों से उड़ के पक्षियों में खतर गया, बरह किया सब को सरों से गुजर गया, आया जो जद में इसकी अजल आ गई उसे, एक आप पड़ी जमी आ गई उसे। हुसैन दम ले हवा में चंद नफस हुसैन, गर्मी से हाथ है फरस हुसैन, वक्त नमाज है बस हुसैन। ये देते हजर जो लगा पुश्त पे भाला, करपूस पे थर्रा के गिरे हजरत वाला, जिब्रील ने कदम से रखा
1: पटक के पुकारा वो राहवार, सैदानियों बिछड़

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कई वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आए जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आए, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज, सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज, रिंद परूड़ी ने रा

रामो ला फरमाइन था आए कोई जेको मुखे तय मुंजे ला मिट्टी दे वने मुखे अल्लाह जी नमाज पढ़िया यो आवाज खेमे में सकीना बुदवा मासूमा खेमे मा मिट्टी खैया खेमे खा बहरा।

चवे तो सेन दुखे टेम ते धीए छो घुराई गई मौला फरमाइन था दुखे टेम ते धीउ घुराए बि नाइन पाणी अची वेंदी आइन मौला फरमाइन था माफिजा सकीना के वठी वनी वडो जा।

मुझे बिटिया तीन जरबहलिया हुसैन जवाना ना हानि तराजिया चौथी दरबहलिया मौला फरमान था पास तुझे बेन जे परदे जो अल्लाह हाफिज पंजी दरबहलिया नबीन टिपो छड़ियो आधी अडठो छई दरबहलिया नबीन टिपो छड़ियो आधी अडसदी रहिया

जल्दी कयो खेमा लुटियो गरीबनि जे लाशनि ते घोड़ा भॼायो सैदनि खे रोअण वारो

अफ्रीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमेप मंज़ूर। लबनान में जंगबंदीअ ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते बि इतफ़ाक़। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहं जो रोडमेप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामे मूजिबि इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्तनामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइमु कई वई। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़नि जी अचवञ बहाल रखणु ऐं ग़लति फ़हमीअ खां वधीक इन्फ्लेक्शन सेल में लबनान ऐं ट्राकड़ी कंदड़ मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मेप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो।

0: ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान पाकिस्तान जा थोरा वञण लाइ सुभाणे इस्लामाबाद पहुचंदो। सदस्य अचण लाइ ईरान जे झंडनि सां परडे॒ही तर्जुमान मौजिब ईरानी सदर हिकु वफ़द सां गॾु इस्लामाबाद पहुचंदो ऐं पाकिस्तान जी सियासी थोरी अस्करी क़यादत सां मुलाक़ात कंदो। मुलाक़ातनि दौरान पाक ईरान वितरफ़न लाॻापन जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ईरानी सदर मौजूदा सूरतयाल में मस्बत किरदार ते पाकिस्तान जा थोरा मञींदो।
1: ईरानी वफ़द जी वात में वॾी अगभराई थी। गुज़िरियल 24 कलाक सुठा रहिया ऐं तहरान सां निगरानी कंदा। इसराइल जी दिफ़ा मुख़्तियारी जो बि तहफ़ुज़ चाहियूं था। ॻाल्हियुनि दौरान अमरीका पारां तय कयल 4 हदफ़ हासिलु कया आहिनि।
2: बात करते हैं बेशरम लोग
3: पंच कर रहे हैं।
2: तो बात बल्दिया फैक्ट्री के लिए पहले करते थे वो सही थी या जो कल इन्होंने बकवास की वो ठीक थी? मैंने कोई गाली नहीं बकी।
3: अब अपने अल्फाज वापस ले ना। आपने
2: बेशरम में कौन सा अल्फाज वापस ले लूं?
3: हाँ ठीक है
2: सर, बेशरम
3: वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ।
4: माफी नहीं मांगेंगे हम, बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए।
5: टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाए।
2: मैंने कौन सी बात की? पार्लिमानी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एमक्यू में एक थी और एमक्यू में एक रहेगी।
5: बोरी की डायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है, तो इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूं।
0: सिंध असेंबली में मुतहदा मेंबर अंसारी जे एस के बोरी बंद लाशन जी धमकी जुमलन जी डेवट का पोए हुकूमती ऐं अपोजिशन मेंबर्स हथे पइजी विया। घरू वज़ीर पारां मुतहदा मेंबर्स जी धमकियुनि वारे मामले जी जांच करण जो ऐलान। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे MPA फरहान अंसारी चयो त रुगो बोरी बंद लाशन जो ज़िक्र कंदा आहियो, कॾहिं बोरी ॾिठी अथव? छा बोरी ॾिसी सघंदव? अवां बोरी सही बि न सघंदा। घरू वज़ीर ज़ियाल हसन अंजार चयो त MPA अणसिधी तरह ऐवान खे बोरी बंद लाशन जी धमकी ॾिनी आहे। हीअ ख़तरनाक ॻाल्हि आहे। मां जांच जो हुकुम ॾेई रहियो आहियां, कमेटी जी अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त मां इजाज़त ॾियां थो, अवां जांच कराए सघो था। लफ़्ज़ इंतिहाई ग़लति आहिनि। धमकियुनि वारे मामले ते हुकूमती ऐं अपोज़िशन मेंबर्स हथे पइजी विया हिक ॿिए खे धिका।
1: पिनकी कराचीअ जी हुजे या लाहौर जी, कानून खां न बचे

0: मुलाकातूं बंद आहिनि। शाह वज़ीर आज़म वटि मुलाकात जो अख़्तियार नाहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। कानून वारे वज़ीर सेनेट आइन जे करे लाइ आयासीं, पर अवां कमेटी अदालती मामले में हुकूमत कुझु नथी करे सघे। अवां खे आला अदलिया में वञणु घुर्जे।
1: पीपल्स पार्टीअ जो एडवोकेट अमजद हुसैन बिना मुक़ाबले गिलगित बल्तिस्तान जो वॾो वज़ीर चूंडजी वियो। पीपल्स पार्टीअ जो इमरान अदीम स्पीकर ऐं नून लीग जो कुफ़ायतुल्ला रहमान डेप्टी स्पीकर तौरु बिना मुक़ाबले कामयाब। वॾे वज़ीर ऐं स्पीकर जी चूंड खां अॻु गिलगित बल्तिस्तान जे 30 मेंबर्स बि हलफ़ खयो।

0: सिंधाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के गडियल चटाभेटी 2024 वारा इम्तिहान जो समूरो रिकॉर्ड 30 जून से तलब करे वरतो। आईजी सिंध चयो त केस के कानून मूजिब हलायो वञे, अदालत पब्लिक सर्विस कमीशन के कंट्रोलर इम्तिहान के तलब नथी करे सघे। दरख्वास्त गुजार के वकील चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंहिंजे वफ़ाद तहत कानून ठाहिया आहिनि। जस्टिस निसार अहमद बंबरो रिमार्क्स ॾिना त जेसिताईं सज़ा न मिलंदी मामला ठीक न थींदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वन थियो। GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 10451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आ है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के यो इश्क जो आजा। حسن جو قرار اصل امام منسی